Buy a network, buy one, gift one free offer. Ma, 3 महीना को 125 Mbps internet. तो 2,500 में खरीद कर दा. Free internet package. नया जोड़ान को लागी gift करने मौका. Suffer referral ma. आप लागी 1 महीना free internet. Buy a net. अब सब connected.

को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफरमा तीन महिना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: राम्ररी हल्ला चलिसक्यो हाम्रो बारेमा। अब मेरो बारेमा के गर्नुपर्छ त्यो आफै सोच्नु है।
1: म छु त, किन टेन्सन गरे कि।

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू अब दाङ मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक घोराईमा।
2: विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू
1: वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णहरि सुवेदीद्वारा दैनिक बच्चा सम्बन्धी सम्पूर्ण चेकअप तथा उपचार सेवा।
2: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुपमा शर्माद्वारा दैनिक चेकअप तथा उपचार सेवा।
3: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट MBBS MD डाक्टर रामेश्वर देवकोटाद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा।
2: नोट, अत्याधुनिक सेवा सहित 500 mA को डिजिटल एक्सरे सेवा र औषधि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
1: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
2: सम्पर्क दाङ मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक हस्पिटल रोड खोराई दाङ।
1: सम्पर्क फोन 082-5909-079, मोबाइल नम्बर 98478-10-03 र 98229-54555।
4: विभिन्न जटिल रोगको उपचार अब सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक घोराही दाङमा।
5: यस सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक हस्पिटल रोड घोराही दाङमा महिलाहरूका लागि वरिष्ठ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोमा रिमाल MBBS MS र पेट छाती मुटु सुगर तथा थाइरोइड रोग सम्बन्धी उपचार वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर वाचस्पति सुवेदी MBBS MD द्वारा दैनिक रूपमा बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टरी सेवा लिई आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
4: नोट, हामी कहाँ भिडियो एक्सरे वरिष्ठ डाक्टर किशोर गौतमद्वारा भइरहेको जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक हस्पिटल रोड खोराही दाङ। सम्पर्क फोन नम्बर 082-5909-829। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97-4-92-64-643 र 98-578-53-825।

राम राम सन्जे पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर म शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्ना बजेटका तयारी हो रहल बजेटका लागि मन्त्रालय हेर्न बजेटका सिलङ तोकनासे मन्त्रालयगत रूपमा छलफल अगाडि बढ़िरहेको आर्थिक वर्ष 2083-84 लाख अन्ना बजेट जेठ 20 गतेभित्र इन्ट्री कर सेक्नाकैकन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयसे माथहतका मन्त्रालय हेर्न निर्देशन दिराखल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हन यथार्थपरक कार्यान्वयनमुखी ओ शून्य गल्ती हुनाकैकन तयारी कर आग्रह मुख्यमन्त्री कार्यालयसे सबको मन्त्रालय हेर्न निर्देशन कैराखल प्रदेश सरकारसे पुरान दायित्व भुक्तानी अधुरा योजना हान सम्पन्न गर्नकैकन प्राथमिकता बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध ओकाउनु जाहिनला खुशी पर्ना वा मन धर्ना नाउँ योजना निधर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य निर्देशन दिराखल असार एक गते ऐना बजेट हान प्रदेशको गौरवका योजना आयोजना ओक्र बुटोल प्रादेशिक अस्पताल पाल्पाक रामपुर से रोल्पाक जिनाबांग सड़क खन प्राथमिकता में धरने बा प्रदेश सरकार से आर्थिक वर्ष 2081-82 का 50 करोड़ भुक्तानी हनफे प्राथमिकता में धरना उल्लुमिनी प्रदेश सरकार से अघारी सरलक बहुवर्ष योजना आयोजना हन फे प्राथमिकता में धैकन आगामी वर्ष का बजेट तैयार करना प्रदेश सरकार का तैयारी बा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसानले उत्पादन गर्लक दूध सहज रूपमा खरिद गर्न वातावरण निर्माण गर ध्यान आकर्षण करा राख्ल दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिले आज सुलक छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले दूध सहज रूपमा खरिद गर्दा ऊ किसान हन समयमा जो भुक्तानी गर ध्यान आकर्षण गरिलखुट भ्याटको अवसरमा दुग्ध वितरण आयोजना क्षमता विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करल रह मुख्यमन्त्री आचार्यले दूध से उत्पादन होने सामग्रीमा विविधीकरण कैकन उपभोक्ता हान सहज रूपमा गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराई पर्नामा जोड़ दिए रखल वहांसे दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादनको बजारीकरण हान प्राथमिकतामा धर पर्ना बटुवा रखल दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटोलको क्षमता विस्तार योजना प्रस्तावको राखल आयोजना प्रमुख कृष्ण प्रसाद अर्यालसे प्रस्ताव पत्र पेश करल रह प्रस्ताव अनुसार आयोजनाको संकलन उत्पादन युटिलिटी ढुवानी तथा बजारीकरणको क्षमता विस्तार दैनिक 25,000 लिटर दूध व्यवस्थापन करना लक्ष्य धरिल्बा। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज कोराई नगर समिति ओ तुलसीपुर नगर समिति का आयोजना में तुलसीपुर 19 भित्तर सक्राम निवासी नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज का आजीवन सदस्य कमान सिंह रोका का निधन का पांचौ पुण्यतिथि में उहां का निवास में श्रद्धांजलि सभा संपन्न करगिल बा। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज तुलसीपुर का अध्यक्ष जगत बहादुर बस्नेत का अध्यक्षता एवं दांग जिला अध्यक्ष गोविंद पौड़ का बरपौना तथा जिला उपाध्यक्ष पद्म प्रसाद शर्मा का विशिष्ट आतिथ्य में संचालित श्रद्धांजलि सभामा बोल्न वक्ताको नक्से कमान सिंह रोकाको व्यक्तित्व उहाँसे शैक्षिक क्षेत्रमा पुगिलको योगदानका साथै सामाजिक कार्यका समेत चर्चा करल रह कमान सिंह रोकासे आफ्नो जीवनको 31 वर्ष दाङका विभिन्न विद्यालयमा शिक्षण कार्यमा व्यतीत करल रह कलसे विभिन्न संघ संस्थामा रकन समाज सेवा करल रह श्रद्धांजलि सभामा बोल्न वक्ताको क्रममा प्रमुख अतिथि गोविन्द पौडेल विशिष्ट अतिथि पद्म प्रसाद शर्मा घोराई नगर समितिका अध्यक्ष बलदेव अधिकारी तुलसीपुर नगर समिति का सचिव दामोदर निपाने आजीवन सदस्य रेवती प्रसाद बस्नेत लगायत रहल रह श्रद्धांजलि सभा में घोराई नगर समिति का कोषाध्यक्ष माधव पौड़ेल तुलसीपुर नगर समिति का कोषाध्यक्ष बसंत निपाने घोराई नगर समिति का सदस्य वीर बहादुर रावत आजीवन सदस्य गुंज बहादुर डागी को उपस्थित रहल रह कार्यक्रम का अंत में दिवंगत शिक्षक कमान सिंह रोका जेठी छाई कालिका रोकासे पिता कमासी रोकासे शिक्षा क्षेत्रमा पुगिलक योगदानका बारेमा उसनाको परिवारमा पुगिलक योगदानका चर्चा गर्दै निवास मजौरा आकन पिताप्रति श्रद्धांजलि अर्पण गर्लकमा नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज दाङका परिवारप्रति धन्यवाद ज्ञापन करल रह कलसे कार्यक्रमको सहजीकरण कोराई नगर समितिका सचिव ज्ञानेन्द्र गौतम करल रह ओ प्रतिनिधि सभाका बैठकमा
लौ नियमावली पेश रहल आज बैसक बैठक में प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति का सभापति गणेश पराजुले से प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति का प्रतिवेदन 2083 ऊपर विचार करियोस्कना प्रस्ताव प्रस्तुत कर लखट लौ नियमावली ऊपर का छलफल में बोलना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का सांसद युवराज दुलाल से असल संसदीय अभ्यास न निरंतरता दिएपर्ना बटवा रखल नेपाली कांग्रेस का सांसद नरेन्द्र कुमार केरूंग से मिनी सांसद का रूप में रलक संसदीय समिति हन नियमावली से जो प्रभावकारी बनाई पर्ना बटुआ रखल छलफल में सांसद हुकनक से उठिल को विषय ऊपर जवाब देती समिति का सभापति पराजुले से अखिसम का संसदीय नियमावली का अभ्यास व विकास क्रम हन ध्यान देकन मस्यौदा प्रस्ताव करगिलक बटुआ रखल वहां से मस्यौदा ऊपर ऐना संशोधन प्रस्ताव का आधार में पाछ थप छलफल करना आश्वासन दे रखल छलफल पाछ लघु नियमावली मस्यौदा समिति का प्रतिवेदन ऊपर विचार करियोस्कना प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृति हो रहल प्रतिनिधि सभा का पहिलो अधिवेशन में गठित 15 सदस्यीय समिति से चालू द्वासर अधिवेशन को पहिलो बैठक वैशाख 28 में मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत कैरल रह गुठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल संज्ञापी थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सकने बाटी अखसक खबर मस्य समाचार कक्ष कसपकु संग्रहसंग मैशालिक राम चौधरी विदाई टू रेडियो मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल